0: the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
4: Bollywood ke legend kalakar, sirf Leica Gold par.

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: लाइका गोल्ड।
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नवनाथ सेंटर हेज UB3 1AR में। भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट srijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
2: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
3: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
4: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
5: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
3: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
6: Maa, dulhan ke liye makeup.
3: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: तेरा मांगा, साथ तेरा मांगा, सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड।

हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कहे ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

होए जेको मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

0: है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
3: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
2: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
3: Call 0208 706 0915 for a free, no-obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
2: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
0: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
4: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
6: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
7: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधु ऑलराइट छे।
8: मे छेने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई लीधी।
7: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी केओस विथ वीरज गेलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी। बधु ऑलराइट छे,
8: बे तर कलाकमां पाछो आवी जशे ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
7: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल।
9: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
10: एवरी पेरेंट वांट्स देयर चाइल्ड टू ग्रो अप हेल्थी। एचपीवी, the human papillomavirus, is a common infection that most people don't even know they have. However, it can lead to cancer in men and women. The HPV vaccine can stop this and is available for every child from age 12 and offers long-term protection with just one jab. Say yes to cancer prevention. Make an informed choice. Find out more at nhs.uk/HPV. Or contact your school immunisation team.
11: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
12: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
13: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
15: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच। मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
16: अक्रॉस ग्रेटर लंदन, दिस इज काजल ऑन ब्रेकफास्ट।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
4: This tune, the FIH Hockey Pro League, brings one of sport's greatest rivalries to London.
5: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
4: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
5: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
8: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
9: This is huge.
8: Fadik Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
9: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
8: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
9: Doors open at 10 AM sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
8: Fadik Halal, Rainer's Lane. There is only one.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: गड़बड़ घोटाला छे. Problems मोटा छे. पर बधु ऑलराइट छे.
12: मैं चले बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई ली थी.
11: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बधु ऑलराइट छे.
12: बेहतर कलाकार पाछो आवे जैसे ने पछी बधु ऑलराइट थई जैसे.
11: In cinemas on 12th of June. For more info visit Bakrania Media's Instagram handle.
13: जर्मनी साथे
11: दर्शन पण अने यूरोप पण
13: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
11: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
13: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Leica Gold.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya dunia ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: between the Winston Way and Grange Road. The A40 Westway onto the Marylebone flyover, very slow this morning. Travel time currently of 35 minutes. Elizabeth Line, overhead line problems at Hanwell. No service from the Elizabeth Line at Heathrow Terminal 5. And we've got severe delays reported on the Victoria Line due to a track fault. That's your latest traffic and travel.
1: Like a gold. 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहा छे सखणा रेजो हस्बैंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बैंड जी
2: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
3: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
4: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. India versus Pakistan live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, बिल्कुल unmissable. अपने टिकट्स अभी बुक करें at englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
8: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
9: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
12: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
13: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
14: Gold Breakfast with Kajal on Like a Gold.

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर यह है लाइका गोल्ड, गोल्डन गीतों का खजाना। और मेरे भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त पुराना रवि शर्मा है मेरा नाम, और आपका दिल बहलाना है मेरा काम। पर उससे पहले थैंक्स कहें काजल को, शिल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और साहब, अब हो जाइए तैयार, दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा, लेकर गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और बहुत कुछ, बहुत सारी सूचनाएं, क्रिकेट हो या फुटबॉल, मैं उनसे जुड़ी जानकारी। और साहब, और भी कुछ है, देखते हैं क्या क्या परोसा जाता है। जुड़ जाइए मेरे साथ। Thank you, Kajal. See you tomorrow.
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
2: Leica. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: हर साइज की चूड़ियां, हर उम्र की महिलाओं के लिए चूड़ियां। भाई मैं तो सोचता हूँ यार, ये स्टूडियो में बैठ करके ना अकेले तो वो मज़ा नहीं आता, जब भाई नाजुक नाजुक हाथों में चूड़ियाँ पहनाने का जो स्वाद लेना है, चूड़ी की दुकान खोल लूँ। हमारे एक दोस्त थे भाई, कलाकार थे वो, उन्होंने चूड़ियों की दुकान खोली हुई थी। क्या साहब, वो छोड़िए क्या रखा सच्ची बातों में। दो गीत हमने आपको सुनवा दिए, और साहब पहला गीत गोरी तेरे अंग अंग में, वो कलशे का जिक्र, वह कलश जानते हैं ना, वो घड़े की आकार का भाई, छोटा बड़ा जो भी बर्तन होता है कलश कहलाता है, और बड़ा बहुत बड़ा हो तो कलसा कह देते हैं उसको, घड़े जैसा होता है। तो वो गीत आशा भोसले और किशोर कुमार व बप्पी लहरी का स्वर भी शामिल था उसमें, वो आपने सुना। दूसरा गीत चूड़ियों वाला रफ़ी साहब की आवाज़ में, और बैक टू बैक संगीत सुनाते हुए हम आ गए हैं इस मोड़ पर जहां अब बताएंगे आपको पाउंड का रेट बाय SBI UK।
1: Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. क्या रेट दे रहे हैं आज भाई? Well, आज State Bank of India का रेट यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है, नहीं यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया रे? ए भाई, State Bank of India कितने पैसे दे रहे हो एक पाउंड के बदले? 100 जी? नहीं 10 रहे है, कितने है गे? है क्या एक्सचेंज रेट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर वन पाउंड टुडे दे आर गिविंग 126.7 रुपीज, 126 रुपए 70 पैसे, 126.7 रुपीज। लेकिन इसके साथ कुछ और भी है भाई, वो कह रहे हैं कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड यू हैव अ चांस टू विन 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स एंड 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट SBIUK.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और भाई ये जो FIFA World Cup, मैं तो पहले ना गलती से फूफा कह दिया करता इनको। फीफा वर्ल्ड कप भाई बहुत ज़बरदस्त आयोजन, कहते हैं कि अब तक के जितने भी आयोजन हुए उनमें ये सबसे बड़ा है। और भाई कल के रिजल्ट्स पर नज़र डालें तो बधाइयाँ हो भाई जीतने वालों को। जर्मनी ने तो 7-1 से अपने विरोधियों के खिलाफ जीत हासिल की है। इसके अलावा और भी टीमें जो आगे बढ़ रही हैं भाई, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बता दूँ आपको कि

0: लीगल एडवाइस बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं आजकल. यस, डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रेक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Yeah, like on.

0: Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: मौसम का किसी की यादों से क्या रिश्ता हो सकता है? जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ऐ जाने वफा, तुम बहुत याद आए।
3: जब जब

0: महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गीत। भाई वैसे ही इस गीत को स्वर रफ़ी साहब ने भी दिया, लता जी ने भी दिया और फिल्म में सुलक्षणा पंडित की आवाज़ भी शामिल की एक और गीत में। फिल्म का नाम था तकदीर, 1967 में आई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी लेकिन बहुत बढ़िया फिल्म थी।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ऐलान किया है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है, दुनिया भर में चर्चा है और इस समझौते के बाद तेल की कीमतों में गिरावट महसूस की गई है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक साझा बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी का भी जो है बयान इस पर आया है। लेकिन समझौते से जुड़ी एक और खबर, इसराइल के राष्ट्रीय मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने कहा है कि अमेरिका ईरान के बीच जो समझौता हुआ है उसे मानने के लिए इसराइल बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसराइल इसे माने या स्वीकार करे। विस्तार से खबरें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर ने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पाबंदी लगाने का, जो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का आज जो ऐलान किया है, कहा है कि पूर्ण प्रतिबंध ही सही विकल्प है, अल्टरनेटिव है। बच्चों की सिक्योरिटी और खुशी के मामले में कोई समझौता करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये पाबंदी अगले साल 2027 की शुरुआत में लागू हो जाएगा। स्टार्मर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले नियम पारित कर दिए जाएंगे और ये प्रतिबंध यानी ये पाबंदी अगले साल की शुरुआत से लागू होगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है, दुनिया भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं वेस्टर्न एशिया में स्ट्रगल खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक अड़चनें पैदा हो गई थी और कई देशों में लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस सहमति के लागू होने से इलाके में शांति, स्टेबिलिटी बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी जो है वो सुनिश्चित होगी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं की तरफ से भी एक साझा बयान जारी किया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं के भी रिएक्शंस आए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल संडे को कुल 4 मुकाबले खेले गए। इनमें से ग्रुप ई और ग्रुप एफ में 2-2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। ग्रुप ई में कोत डिवार ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया जबकि जर्मनी ने क्यूरासाओ को 7-1 से पराजित किया। वहीं ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा जबकि स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से मात दी। आज वर्ल्ड कप में ग्रुप एच और जी के 2-2 मुकाबले खेले जाने हैं। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे खेलेंगे जबकि स्पेन की टीम काबो वर्दे से भिड़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ इसमें इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर की एक कड़ी प्रतिक्रिया, एक कड़ा रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो समझौता है ना, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम इसे माने। इतामार बेन ग्वीर ने एक्सपर लिखा कि ट्रंप का समझौता मानने के लिए हम विवश नहीं है, मजबूर नहीं है। इसराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक आजाद नेशन हैं और संप्रभु यानी सॉवरन राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो जिम्मेदारी इसराइल के नागरिकों, आईडीएफ के सैनिकों और यहूदी लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि इसराइल कोई अनस्टेबल देश नहीं है, हम स्थिर हैं, स्टेबल हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, साफ बता देना चाहते हैं कि हम अमेरिका से प्रेम करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभारी हैं, फिर भी इसराइल कोई बनाना स्टेट नहीं है। मैं ये फिर बार बार दोहराता हूँ और हर जगह पर दोहराता हूँ कि हम किसी समझौते को मानने के लिए विवश नहीं हैं। हिजबुल्ला को पूरी तरह ख़त्म किए बिना इसराइल किसी भी समझौते पर राजी नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। दैट्स द स्टेटमेंट ही सेड। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं और भाइयों भाइयों आइए अब लौटते हैं संगीत की ओर।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लता मंगेशकर और मुकेश जी के स्वर सुन रहे थे आप। फिल्म का नाम था हरियाली और रास्ता। और भाई गीत सुनते सुनते मेरी नजर गई इन संदेशों पर, मैसेजेस आए हैं। एक तो वत्सला लिख रही हैं कि रवि जी आज सोमावती अमावस्या है, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिव्य पावन अवसर पर हमारी मंगल कामनाएं स्वीकार कीजिएगा। भाई पुरुषोत्तम मास यानी जो एक्स्ट्रा मंथ जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार था अधिक मास, वो आज समापन हो रहा है। और आज सोमवार भी है और अमावस्या भी है, ये संयोग बहुत कम बनता है। पर कलयुग में तो काफ़ी बनता है, लेकिन द्वापर में पांडव इंतज़ार करते रहे लेकिन कभी भी सोमवार के दिन अमावस्या नहीं आई वहाँ पर। वत्सला जी आपको भी शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। और भाई हमें कमल प्रभाकर जी जो हैं वो शुभकामनाएं भेज रहे हैं, जो क्रिकेट के साथ हमें जोड़े रखते हैं, तो उनसे भी बात होगी आगे चल के। एजाज चैशम में हमें सुन रहे हैं। और एजाज यार इतना ध्यान से क्यों सुनते हो प्रोग्राम्स को, भाई हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी यार। आई लाइक इट, उनको छोटी छोटी बारीकियों का भी पता है। रवि जी अभी अभी आपने गीत चेंज किया है म्यूजिक सुन करके, मैं बता सकता हूँ आपको, यू आर ग्रेट एजाज, थैंक यू वेरी मच। और भाई पम्मी जी स्लो में सुन रहे हैं, थैंक यू, उनको समाचार बहुत पसंद आते हैं। ज्योति गोल्डन वाला, राजेंद्र राज, आनंद तोमर, भरत गंगा राम, अनिल सोनी वियाना में जुड़े हमारे साथ। आप
1: ये है Like a Gold Holiday Breaks are brought to you by Southall Travel।
0: लीजिए साहब Southall Travel का संदेश भी सुन लीजिए, कह रहे हैं कि छुट्टियां पर क्यों नहीं जाते, छुट्टियां मनाओ ना, आप जाओ ना जाओ, भाई शर्मा जी तो जाएंगे, हाँ बता रहा हूँ अभी, हम तो जाएंगे भाई, छुट्टियां गुजारने जाएंगे, कहाँ जाएंगे क्यों बताएं। लेकिन वैसे मैंने भाई कई बार छुट्टियां जो हैं बिताई हैं Southall Travel के साथ, आई लाइक इट, मेक द समर मेमोरेबल विद Southall Travel, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। Southall Travel भाई आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका नंबर है 0208 5748410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
12: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
13: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
14: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
15: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
16: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
15: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
17: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइक अ गोल रेडियो, लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: ये अंदाज और ये आवाज तो भैनो भाइयों महमूद साहब से जुड़ा लगता है. महमूद वैसे गाते भी थे, गुनगुनाते भी थे.
18: घोड़ा, सॉरी भाई, महमूद साहब नहीं, ये घोड़े की आवाज थी.

0: तक पहुंचा दे।
1: किशोर कुमार की आवाज और महमूद का अंदाज। भाई कौन सी फिल्म में थी रिक्शा वाले? मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी, गाड़ी रिक्शा, मेरी रिक्शा सबसे निराली। कुंवारा बाप था फिल्म का नाम, और साहब कुंवारा बाप था या जनता हवलदार, आई डोंट नो, मैं क्या जानू पुरानी फिल्मों के बारे में।
2: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: LemFi के रेट्स नोट कीजिए, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.2 रुपीस, पाकिस्तानी 373.67, श्रीलंकन 448.83, बांग्लादेशी टके 165.06 एंड अफगान अफगानी 84.07।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Well, the gold is trading at the rate of 104.01 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
5: Lights on, shutters up, staff ready.
4: But today's customers don't start on the high street.
5: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
4: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
5: They walk into your competitors.
4: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
5: Hearty Hanks, the digital to agency that doesn't play safe.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che. Ek dhamakedar international Gujarati comedy. Jai's Entertainment. Laine avi rahya che. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah saathe. Haasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रेजो हस्बैंड जी।
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
11: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: तुझे क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
12: ये तो बताओ, कोई पता चला?
0: गुरु गुरु
12: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
13: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र शीघ्र
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
15: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
16: लंदन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फॉर अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिजवे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन।
17: Be part of a historic grand opening.
18: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
17: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
18: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
17: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
20: फादर सन नो बॉन्ड जेटलो स्पेशल छे, इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे।
21: अंकल समय पहला थी आवाज छो।
22: आवाज इटले के वा।
20: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स जिंदगी वंस मोर।
22: मारो बाप बनवानी कोशिश करत तू, बुद्धि वेची आवे छे तू। अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे।
20: आ फादर्स डे फील द इमोशंस, लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
22: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर।
1: और लीजिए साहब, ये गीत हमें, अधूरा सा गीत हमें लेकर के चलेगा समाचारों तक। और आज के प्रमुख समाचारों में भाई एक खबर यहाँ, जो ब्रिटेन से प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर का वो ऐलान है जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है। स्टार्मर ने कहा है कि पूर्ण प्रतिबंध ही सही विकल्प है, बच्चों की सिक्योरिटी और खुशी के मामले में हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई पाबंदी साल 2027 की शुरुआत में लागू करने की बात कही है उन्होंने। यह खबर और दूसरी खबरें अब से थोड़ी देर बाद ही हम आपको समाचारों में सुनवाते हैं, और समाचारों के उस पार हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी चिंतन में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइका रेडियो नेटवर्क पर। न्यूज इज नेक्स्ट
23: अक्रॉस ग्रेटर लंदन। दिस इज लाइका गोल्ड 10:35 AM DAB एंड ऑनलाइन, अ पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क।
24: Top stories this hour. Sir Keir Starmer's announced under-16s will be banned from social media platforms, including Snapchat, YouTube and TikTok, saying it'll make our children happier. The Prime Minister's announced plans to introduce the measures by next spring. Messaging apps will be exempt, but there will be restrictions on gaming platforms like Roblox. The Tories have welcomed it. Shadow Education Secretary Laura Trott believes children are crying out for a ban.
25: It's just the pressure for them every single day to reply to those messages, to look at those streaks, to do stuff that they don't want to do in order to get likes and clicks. It's just wrong, and this is going to change things for them, and that is a very positive thing.
24: The NSPCC's called it a win for children and parents. An outline for a peace agreement has been reached between the US and Iran. President Trump says it includes an immediate reopening of the Straits of Hormuz shipping lane. It's expected to be officially signed on Friday. Sir Keir Starmer's welcomed the news and has congratulated the president.
26: This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity.
24: It's led to a sharp fall in oil prices. Meanwhile, the Israeli government says it won't withdraw its troops from Lebanon and they'll remain there indefinitely despite the agreement. Israel's war against Hezbollah in the country has been a sticking point in negotiations between Washington and Tehran. At least 9 people have been killed in Russian strikes on Ukraine. Over 600 drones were used in an overnight wave of attacks targeting Kyiv and Kharkiv. MPs will have another chance to legalise assisted dying in England and Wales. The previous bill was blocked by the House of Lords, but it will now be reintroduced by another backbench MP. And in sports, Real Madrid have completed the signing of Chelsea defender Marc Cucurella. The 27-year-old makes the move in a deal that could rise to almost £52 million. From Sky News, I'm Charlie Max.
0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
4: Very good morning. मौसम वाले कह रहे हैं कि भाई दोपहर बाद वाले मौसम में जो बादल चक्कर लगा रहे हैं और हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी भी कहीं पर अगर नजर आ रही तो कहते हैं इट विल डाई आउट और प्लंटी ऑफ सनी स्पेल्स आपको सेवन करने को मिलेंगी और वार्म प्लेसेस जो हैं आप अनुभव करेंगे और आज रात को भी मौसम खुश्क रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ऐसा लंदन में भी और मिडलैंड में भी, मिडलैंड में टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस और लंदन में 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा, मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। और बहन भाइयों, इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। वक्त चिंतन का है। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं क्रॉयडन से डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी का भेजा आलेख। कहते हैं आज 15 जून है, मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरा सारा परिवार मुझे शुभकामनाएं दे रहा है, लेकिन आज ही के दिन के साथ जुड़ी है एक और घटना, एक और व्यक्ति का जन्मदिन है आज। मेरा भी जन्मदिन है डॉक्टर साहब कहते हैं, तो डॉक्टर साहब पहले तो आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। पर कहते हैं कि आज ही के दिन उसी साल जिस साल मेरा जन्म हुआ था, एक और व्यक्ति जन्मा था जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जानते हैं क्या नाम है उसका? उसका नाम है अन्ना हजारे। भाई ये एक समाज सेवक हैं, लेकिन इनकी कहानी, इनकी जीवनी बड़ी दिलचस्प है। और डॉक्टर साहब याद दिला रहे हैं कि देखो, उनके और मेरे विचार कितने मिलते हैं, आचार और व्यवहार कितने मिलते हैं, आप उनकी कहानी पर झांक कर देखो। वैसे बता दें भाई, आज 15 जून को लक्ष्मी मित्तल, जो ब्रिटेन के सबसे धनवान व्यक्ति होते थे किसी समय, अब शायद उनका पहला नंबर नहीं है, लेकिन भाई वो भी एक बड़े दिलचस्प व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। लक्ष्मी मित्तल 1950 में जन्मे थे राजस्थान में। सुरैया, एक जानी मानी गायिका और अभिनेत्री, गुजरांवाला पाकिस्तान में जन्मी थी, पाकिस्तान उस समय नहीं था, लेकिन मतलब ब्रिटिश इंडिया में जन्मी थी। 67 फिल्मों में उन्होंने काम किया, 67 फिल्म्स, और 350 के करीब गीत उन्होंने गाए। तो सुरैया, सुरीली आवाज़ की स्वामिनी, उनका आज भाई दुनिया में होती तो वो भी अपना जन्मदिन मना रही होती, लेकिन हम जन्मदिन मना रहे हैं अन्ना हजारे साहब का, और साथ में डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा का, जिन्होंने आज के लिए चिंतन भेजा है। कहते हैं कि कुछ लोग जीवन में एक निर्णय लेते हैं और फिर उस पर अपने जीवन को चलाते हैं। अन्ना हजारे की जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटना घटी कि वो एक प्रतिष्ठित समाज सेवक बन गए। 15 जून 1938 में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग 37 में भी बताते हैं, महाराष्ट्र में जन्मे थे वो। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और गांव की डेवलपमेंट के कार्यों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के निर्माण से गांव का निर्माण होता है, गांव का, गांव से समाज का निर्माण होता है, फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। अन्ना हजारे की जिंदगी का एक प्रेरक प्रसंग डॉक्टर जगदीश शर्मा लिख के भेजते हैं कि बात उस वक्त की है जब अन्ना हजारे भारतीय फौज में थे। वो एक सैनिक थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी तैनाती पंजाब के खेमकरण सेक्टर में थी। जंग चल रही थी, एक एयर अटैक में, एक हवाई हमले में उनके आसपास के उनके कई साथी फौजी शहीद हो गए, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गए। इस घटना ने उनके मन में गहरा एक सवाल खड़ा किया, मेरे सारे साथी शहीद हो गए, मैं ही क्यों बचा? क्या मतलब है इसका? क्या संदेश देना चाहता है परमपिता परमात्मा? मैं फौज में भर्ती हुआ था अपने देश के काम आने के लिए, मैं समर्पित हूं अपने राष्ट्र के, उसके बाद भी मैं बच गया, साथी शहीद हो गए, इसका मतलब है मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि प्रभु मुझसे कुछ और काम लेना चाहते हैं, मुझसे और सेवा करवाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में। फिर भाई उनकी रिटायरमेंट हो गई। फौज से रिटायर होने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें स्वामी विवेकानंद की एक किताब मिली। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया
और एक जगह जाकर के उनकी आंखें जम गई। स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, यानी इंसान की सेवा भगवान की सेवा है। बस ये सेंटेंस उनकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन गया। फौज से रिटायरमेंट के बाद वे अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि लौटे। वहां उन्होंने देखा कि गांव गरीबी, सूखे और बेरोजगारी और नशाखोरी से जूझ रहा है। उन्होंने गांव के लोगों को साथ लेकर के जल संरक्षण, पानी को जमा करके स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, सामुदायिक श्रम दान यानी मिलजुल करके परिश्रम करना, मेहनत करना, ऐसा एक अभियान शुरू किया। और धीरे धीरे वही गांव जो पिछड़ा हुआ था, बदहाली का सिंबल था, पूरे मुल्क में आदर्श ग्राम के रूप में पहचाना जाने लगा। दूर दूर तक चर्चा हुई, लोग रालेगढ़ सिद्धि देखने जाने लगे कि एक ऐसा गांव है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, कहीं से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जन भागीदारी का एक एग्जाम्पल बन गया कि लोग गांव के खुद इकट्ठे होकर के मेहनत करते हैं, अपने लिए हर चीज बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी उन्हें बाहर से लेना नहीं पड़ता। जिंदगी की कठिन घटनाएं भी नई दिशा दे सकती हैं, और एक व्यक्ति का संकल्प, एक आदमी का इरादा पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। सेवा, डिसिप्लिन और ईमानदारी से इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। तो बहनों भाइयों, आज 15 जून को डॉक्टर जेसी शर्मा कहते हैं कि अन्ना हजारे जी का जन्मदिन तो है ही, मेरा भी जन्मदिन है, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, एक ही दिन हमारा जन्म हुआ, एक ही देश में, मैं ब्रिटेन आके बस गया, अच्छी खासी प्रोफेसर की नौकरी, और उसके बाद मेरे मन में भी यही विचार आया कि मैं भी अपना जीवन सिर्फ अपने लिए सीमित ना रखूं, अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। और कहते हैं कि ब्रिटेन में रहते हुए मैंने भारत में एक ये विश्वविद्यालय में जॉब की, सेवा का कार्य अपनाते हुए कि मैं उस देश के लिए, उस समाज के लिए भी कुछ करूं जहां मेरी ज्यादा जरूरत है। तो सोचिए बहन भाइयों, लोग वहां से यहां नौकरी करने आते हैं और डॉक्टर शर्मा यहां से वहां पढ़ाने जाते, छुट्टियों में यहां लौट आते, परिवार यहां, यहां के सिटीजन, लेकिन भारत में उन्होंने अपने जीवन के कई अमूल्य वर्ष सेवा के रूप में विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर की और एक डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जॉब करते हुए गुजारे। भाई हमें गर्व है इन विचारों पर, इन आदर्शों पर, कि एक समय ऐसा आता है जब आपके मन में भी विचार आता है कि अपने लिए तो जी लिए, अब जिए समाज के लिए, अब जिए देश के लिए, अब जिए मानवता के लिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू अन्ना हजारे एंड हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर शर्मा।

0: बादल फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में आपने सुना आज के चिंतन के साथ। चिंतन में शामिल आलेख हमें डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा जी ने भिजवाया। क्रोडन से डॉक्टर शर्मा ने ये लेख भिजवाया और भाई आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हम उन्हें बधाई संदेश भिजवा रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यू आर 88 सर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेंचुरी भी हम बड़ी धूमधाम से मनाएं, शतक आप लगाएं और हम यहाँ से चिंतन में आपको बधाई भिजवाएं उस समय भी। आपको जन्मदिन की बधाई देने वालों में आपके परिवार के अन्य लोग भी, आपकी तीनों बेटियां, दामाद, ग्रैंड चिल्ड्रन और आपके सभी मित्र संबंधी दूर दूर से आपको शुभकामनाएं भिजवा रहे हैं। और भाई साथ ही आज ही के दिन आपके साथ ही उसी साल जन्मे थे अन्ना हजारे, युग परिवर्तक कहते हैं भाई। उन्होंने समाज के लिए, अपने गांव के लिए और अपने देश के लिए जो कुछ किया है, आपने भी परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारी ओर से आपको शत शत प्रणाम। और बहनों भाइयों, आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ्रॉम लाइका रेडियो नेटवर्क। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन
0: याद दिला दें आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आइए अब जरा नजर डाल लें

0: to win the £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when you send over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: और साहब फीफा का जिक्र कर रहे हैं तो भाई वर्ल्ड कप 2026 में कल संडे को कुल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से ग्रुप ई और ग्रुप एफ में 2-2 मुकाबले खेले गए। आज की बात करें तो आज ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच मैच होना है, जबकि स्पेन की टीम काबो वर्दे से भिड़ेगी। इसके अलावा ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी, और एक और मैच इसी ग्रुप में बेल्जियम और मिस्र के बीच भी खेला जाना है। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्या हो रहा है ग्राउंड में भाई, वहाँ से हम आपको जोड़े रखेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप के साथ। लेकिन एक बात और बता दें आपको, ये जो हमारे प्रायोजक हैं रैक लॉ वाले कहते हैं, डोंट फॉरगेट यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका। ये लाइका नाम बड़ा फायदेमंद है, याद रखिएगा, उन्हें फ़ोन करके अगर आप लाइका मेंशन करेंगे 15 मिनट की जो कानूनी सलाह है मुफ्त आप हासिल कर सकेंगे।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: This is Leica Gold.

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Extra podcast update.
4: और भाई बता दिया आपको लाइका एक्स्ट्रा पर जो हमारा नया एपिसोड जो है वो उपलब्ध है और इस एपिसोड का नाम है बॉलीवुड रिवाइंड ए थ्रोबैक टू 2000s होस्टेड बाय अनुज राडिया। देखना मत भूलिएगा भाई हमारे जो एपिसोड सब पुराने भी वहां पर उपलब्ध हुए और लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब अमेजन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Fever Tree Mexican Lime Soda. You're not like other mixers. Your zesty bite, twist of yuzu. Sure, you're perfect with vodka. But even on your own, you make the most exquisite soft drink. Fever Tree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub Best service with unbeatable price.
4: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas. Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
12: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5 कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
13: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners LIKA Radio.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply 16 days to China guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Like a Cool. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
3: मेकिंग समर फील बेटर दिस इज लाइका गोल्ड
17: अपने शहर में शांति है पर घर में शांति नहीं है क्योंकि बीवी अपना कहना मानती नहीं है। अरे भाई किसकी बीवी कहना मानती है, खाम खाम ऐसी बातों को क्यों छेड़ते हो आप।
18: अरे बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक।

कितना रियाज है इस गायन के पीछे, कितना अनुभव है, कितनी मेहनत है, कितने रंग हैं। जिए हरिहरन।

0: रंग है साहब, कौन नहीं रंगना चाहेगा इस रंग में भाई। और देखिए ये संगीत में ही जादू है कि मेरे महबूब इलाही, और गाया जा रहा है गणेश उत्सव के मंच पर। भाई ए हरिहरन साहब को पहली बार मैंने लाइव सुना था 1989 में, जब ये यहाँ अलेक्जेंड्रा पैलेस में लता जी के साथ गाने के लिए आए थे। और साहब आवाज़ में लगातार निखार आता ही जा रहा है, छा जाते हैं मंच पर, ये सिर्फ गाते नहीं हैं खा जाते हैं ऑडियंस को। भाई जी चाहता है कि भाई ऐसे महान कलाकार के ना चरण छूले जाके, जब वो या आप इनको सुने सुनते रहें, घंटों सुनते रहें। 4 जुलाई को यहाँ साउथ बैंक में भाई इनकी परफॉर्मेंस है, मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लोग जाएंगे। लेकिन ए हरिहरन साहब इतने सुरीले गायक कलाकार हैं। लता जी जब आई यहाँ पर अपना शो करने के लिए पंडित नेहरू जी की सेंटिनरी के अवसर पर, तो भाई उनके सामने सवाल ये था कि राज अपने मुकेश जी के गाने गाने के लिए वो नितिन मुकेश को साथ लेके आईं, रफ़ी साहब के गाने गाने के लिए सुरेश वाडकर को अपने साथ लेके आईं, और साहब क्या बताएं आपको कि मन्ना डे जैसे क्लासिकल सिंगर की आवाज़ का रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने चुना ए हरिहरन को। भाई मैं तो अभी आपने थोड़ा सा रंग देखा उनका, सुना इस सप्ताह के वो आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक, कई गीत हम उनकी आवाज़ में सुनाएंगे। लेकिन ही इज़ सच अ ग्रेट आर्टिस्ट के आप उनका ध्यान भी करते हैं ना, तो सुरीलापन आपकी आवाज़ में आ जाता है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley.

0: Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: बात भाई गायन की हो रही है और गायक कलाकारों की चर्चा कर रहे हैं हम, तो बताएं आपको बहुत ज़्यादा गीत तो आप हमारे यहाँ से रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्ना डे भाई, लता जी, आशा जी की आवाज़ों में सुनते हैं, लेकिन कुछ गायक कलाकार ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे जा चुके हैं, पर आवाज़ तो हमेशा अमर है ना, आप जानते हैं। एक आवाज़ का जिक्र करें जिनका आज जन्मदिन पड़ता है, वो दुनिया में नहीं है लेकिन आवाज़ तो है, क्योंकि स्वर तो ईश्वर है बहनों भाइयों। एक जमाने में लोग सुना करते थे सुरैया की आवाज, और सुरैया और शाम की गायन के क्षेत्र में बड़ी एक मशहूर जोड़ी थी भाई। आइए उस आवाज को याद करें क्योंकि आज सुरैया जी का जन्मदिन पड़ता है।

0: Feel the track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: देखिए साहब, वैसे तो सुरैया का वो दौर था जब सुरैया लाहौर में जन्मी थी और उनका जो पूरा नाम था वो था सुरैया जमाल शेख। तो मुस्लिम परिवार से थी, लेकिन साहब सुरैया और शाम की जोड़ी ही नहीं, सुरैया और देवानंद के साथ भी उनका नाम जुड़ा। सुरैया कई फिल्मों में हीरोइन के भाई रूप में भी आईं और गायिका के रूप में भी उन्होंने खूब ख्याति कमाई, लेकिन साहब सुरैया बेहद खूबसूरत और बेहद सुरीली आवाज़ की मालकिन थी। 2004 में उनका निधन हुआ 74 साल की उम्र में, और अपने ज़माने की वो टॉप हीरोइंस में और टॉप गायिकाओं में शामिल रही थी। मुझे पूरा यकीन है वाली भाई बहुत सारी जानकारी लेके आएंगे उनके बारे में, पर फिलहाल उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक गीत हमने उन्हें समर्पित किया। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है भाई, क्रिकेट चल रहा है ना आजकल।
0: ये है लाइका गोल्ड Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica
2: भाई शाम को मैच चलते हैं तो कमल प्रभाकर जानकारी देते हैं वहाँ से जो कुछ भी ग्राउंड में चल रहा था। लेकिन इतना बता दें, कल का जो मैच खेला गया ना वो भारत और पाकिस्तान के बीच था, और भाई वो महिलाओं का मैच हो या अंडर 19 का हो या फिर पुरुषों की टीमें हो, ये भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होता ना वो अपने आप में ही किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होता। तो भाई बहुत लोग जो है दिल थामे, कलेजा थामे और पता नहीं क्या क्या थामे इस प्रोग्राम को, इस मैच को देख रहे थे। और इस मैच में साहब शुरू में लगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं पाकिस्तान की गेंदबाज, जब दो विकेट जल्दी जल्दी चटका दिए। भाई हमारी वो बिटिया, हमारे शहर की लड़की जो है शेफाली वर्मा, उसने आते ही पहली गेंद पे छक्का लगाया और दूसरी गेंद पे फिर वो आउट हो गई, और इतनी जल्दी आउट होने में लगा कि भाई पाकिस्तान की गेंदबाजी जो है कमाल की रहेगी। दूसरा विकेट भी जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद जमकर खेली भाई भारत की महिलाएं, और पाकिस्तान के मुकाबले उन्होंने 170 रन जोड़े और पाकिस्तान की टीम को फिर 106 रन पर समेट दिया। बड़ी निराशा हुई पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को, लेकिन साहब क्रिकेट इज़ लाइक दैट। तो 64 रन से उन्होंने ये मैच अपने नाम कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज के मैच का इंतज़ार रहेगा, विल सी कौन जीतता। भाई अभी तो मैच शुरू हुआ है मुकाबला वर्ल्ड कप का, हम जोड़े रखेंगे आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप के साथ, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप।
0: दिस अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय TW पेज। विजिट Chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LAIKA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क पर स्वागत है आपका। और भाना भाई, एक चीज़ और आपको याद दिलानी है कि भाई हमारे यहाँ से कई चीज़ों का जो संबंध है, कई चीज़ों के साथ हम जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क जो है अब जुड़ा हुआ है किसके साथ, हरिहरन का जो कार्यक्रम हो रहा है 4 जुलाई को, उसके साथ भाई हम रेडियो पार्टनर्स हैं उनके। तो टिकट्स एट southbankcentre.co.uk इंतज़ाम कर लीजिएगा, बहुत सुरीले गायक कलाकार हैं जैसा मैंने कहा, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं हम लाइका रेडियो नेटवर्क, सो यू मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस शो।
0: ये है लाइका गोल्ड।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। भाई पता नहीं यार क्या करेंगे, इतने दुपट्टे का दुकान खोल लिए क्या, सबने एक एक दुपट्टा ले लिया उसका बिचारी का। वापस करो यार, क्या करना इतने दुपट्टों का। लता मंगेशकर की आवाज। और भाई ये गीत और ये फिल्म पाकीज़ा अपने ज़माने की हिट फिल्म रही, फिर अभिनेत्री भी हिट थी भाई, वो बहुत छोटी उम्र में चले गई दुनिया से, मीना कुमारी। भाई मैं क्रिकेट की बात जब कर रहा था ये तो बताना भूल ही गया कि भाई वो नाराज़ हो जाएंगी मेरे से, दीप्ति शर्मा के प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके पाकिस्तान के, और एक खिलाड़ी को रन आउट भी किया, और भाई बैटिंग में भी वो जो है अपना थोड़ा बहुत योगदान उन्होंने दिया, लेकिन दीप्ति शर्मा एज ए प्लेयर ऑफ द मैच वंडरफुल, क्या कहते हैं भाई, प्रदर्शन जो है उन्होंने खेल का किया था इसमें, जो भारत ने कल पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता। राइट, क्रिकेट से जोड़े रखेंगे आपको, हम सुनते रहिएगा नायका रेडियो नेटवर्क। साउथ हॉल ट्रेवल का संदेश, छुट्टियों पर जाइए ना, कहाँ जाएं, मैं तो जा रहा हूँ भाई बहुत दूर का डोमिनिक रिपब्लिक। मेक दिसंबर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 ईयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रेवल, कॉल 0208-574-8410। भाई मुझे तो हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट देते ही हैं वो, पर वो मेरा ख्याल सभी को देते हैं, उनके लिए हर कस्टमर जो है बड़ा VIP होता है। मैं, मुझे याद है कि परिवार के साथ गया था तो सब कुछ बुक किया उन्होंने, होटल भी, फ्लाइट भी, हेलीकॉप्टर भी, क्योंकि वहाँ ग्रैंड कैनियन में जाने के लिए, और साहब मज़े आ गए थे। तो थैंक यू साउथ हॉल ट्रैवल, थैंक यू वेरी मच।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: So, what's on your to-do list today? Why don't you check if you're eligible for pension credit? It tops up your pension income and also opens up help with heating bills, council tax and more. Search pension credit on gov.uk or call 0800 99 1234. There's nothing to lose. Check today. Pension credit. Credit where credit's due. Eligibility criteria apply.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
6: You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu, Ayurved that fits your life.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823।
8: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
5: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है.
11: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
12: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
11: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
13: Maa, dulhan ke liye makeup.
11: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAP P.S. Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
17: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
17: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: Shri Jagannatha Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak, Navnath Center, Hayes, UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka laabh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
19: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
20: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
19: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
21: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: आइए आपको मिलवाते एक और महान गायक कलाकार से. पहचानिए इस आवाज को.

0: ओ माय गॉड, यहाँ पे सानुदा को सुन के तो मजा ही आता है, लेकिन पूर्णिमा जी, सुषमा श्रेष्ठा, उनकी आवाज सुनकर कुछ एक फ्रेशनेस मिलती है, बिकॉज 90% सॉन्ग्स आई वुड से वी आर विद अलका याग्निक, एंड देन ऑब्वियसली कविता कृष्णमूर्ति, देन साधना सरगम, इन सब के साथ सानुदा ने गाया. लेकिन कुछ कुछ सिंगरों के साथ इन्होंने जब गाया तो गाने बहुत मतलब अच्छे लगते हैं. एंड ऑफ कोर्स स्टार्ट द बॉल रोलिंग विद इवनिंग इन पेरिस. आज क्या क्या होने वाला है. द वीकेंड वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक विद द न्यूज ऑफ आतिफ असलम डूइंग एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शो. This was the general consensus of everyone saying he pleased every person in the audience. इन्होंने अपने गाने सुनाए, पंजाबी गाने सुनाए, इन्होंने बॉलीवुड के फेमस कुमार सानू से लेकर सब सिंगरों के गाने इन्होंने मिक्स करके जैसे सुनाए, मतलब के he really won everybody's heart. And our Laika परिवार was there. Unfortunately, I couldn't make it because of other commitments. But boy, oh boy, that was one beautiful show. And now the next best talk of the town happens to be Hariharan. Hariharan ji se weekend ko bhi baat hui. He is really looking forward to coming and entertaining you to the fullest. Inke sab filmi gaane inhone shamil kiye hue hain. Aur kuch famous ghazals. Aur kuch ek do colonial ghazins. मतलब एक वेरिएशन ऐसी इन्होंने बनाई है. मैंने पूरा लिस्ट देखा, काश मैं सबको व्हाट्सएप करके ये लिस्ट भेज सकता, लेकिन बिलीव यू मी, यू हैव गॉट टू बिलीव मी, व्हाट अ शो इट्स गोना बी एट द रॉयल फेस्टिवल हॉल ऑन 4th of July. वो बाद में ही इज़ अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक, सो उनका गाना भी हम सुनाएंगे और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे कहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं. वर्ल्ड कप, ओ माय गॉड, दैट इज़ रियली रियली हैपनिंग. एंड वर्ल्ड कप के अंदर मैंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जब सुनी तो मैं आई कुडन्ट वेट टू शेयर इट आउट विद यू. जैसे कि देर इज़ अ प्लेयर कॉल्ड निमेचा, NMECHA. And he is the player from Curaçao. And Germany versus Curaçao. Okay, Germany 7 and Curaçao 1. Lekin wo one goal, pehli 6th minute mein, Mecha, isne score kiya. That happens to be the quickest goal of the tournament so far. And the matches are going so well. Netherlands, जिन्होंने दो गोल स्कोर किए, और जापान ने भी लास्ट मिनट पे इन्होंने सेकंड गोल करके इक्वलाइज कर दिया. ऐसे ऐसे मैचेस हो रहे हैं, ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को, एंड स्कॉटलैंड स्कोरिंग देयर फर्स्ट एवर गोल इन द वर्ल्ड कप काइंड ऑफ थिंग, एंड क्यूरासेओ अगेन, बट दे वर हैप्पी दैट दे स्कोर्ड वन गोल. And Manuel Neuer, that is N-E-U-E-R, Manuel Neuer, he is the goalkeeper of Germany, and he is the oldest ever player of Germany, that is 40 years and 79 days old. Now that is a good going for him, really. और जब जर्मनी 7 गोल स्कोर कर रही थी, वो तो ऐसे ही बैठा हुआ था. पहला गोल हो गया, उसके बाद he wasn't that busy, but then we appreciate him playing football at 40 years and 79 days and wish him a very long football life, I would say. Yes. And second hour mein hum baat karenge Suraiya ji ki. What a lady. What a lady. And what a love affair. She could not marry the man she loved and then she never got married. Ye kahani ek khatarnak kahani hai, really. और जैसे देव साहब के साथ हैं, देव साहब ने खुलेआम कहा था कि ही लव्ड हर सो मच बट कुड नॉट मैरी हर. इसमें ऑब्वियसली रिलीजन का मामला आ जाता है, मज़हब का मामला जब आ जाता है. ग्रैंड मदर वॉज स्टॉन्च एंड वुड नॉट अलाउ हिम हर टू मैरी हिम. तो ये कहानी भी हम दोहराएंगे, जो आपको मालूम ही होगी, जिनको नहीं मालूम उनको बताएंगे, और इनके गाने भी सुनेंगे, ऐसे चटपटे गाने. सुरैया द ग्रेट एक्ट्रेस, शी वॉज वन नॉच higher than other actresses. You know why? Because she was not only a great actress with a lot of versatility, but she also sang her own songs. Except जब प्यार हो गया था देवा साहब के साथ, तब उनको ज़्यादा टाइम चाहिए था देव साहब के साथ, तो वो लता जी को गाने देती थी गाने. So that is the story of Suraiya in the second hour.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And we have the rates right here. I'm trying to find out the rate for SBI UK and the latest rates, which fluctuate quite often. We have one sterling pound can get you up to 126.7 Indian rupees. You send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a 75 pound voucher every day when you send over 1000 pounds. Also a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just 711.

का क्यों मर रस्ते में निकल गया है अपना तो हाय रे कचूमर रस्ते में कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में है।

0: plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
1: Step into the new grand showroom of Gargels Couture, Southall.
0: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
0: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gargels Couture, now open 7 days a week.
1: Gargels Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
2: शानू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Lyca Gold.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
0: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
0: Exclusive radio partner, Lyca Radio Network. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
0: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
0: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
0: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
10: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
11: मैं छेने बैक टू बैक थ्रन मूवीज जोई लीधी।
10: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी केओस विद वीरज गेलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
11: बेतर कलाकार पाछो आवी जशे ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
10: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल।
12: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
13: लंडन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब टीआरएस कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद better prices, perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208-150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
16: Lyca Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LycaGold.com.
17: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

हैट्स ऑफ टू गुलाम मोहम्मद जिन्होंने पाकीज़ा का गायन म्यूजिक डायरेक्शन किया था, मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई ये बहुत खूबसूरत गीत। राज कपूर जी के साथ इन्होंने फिल्म दास्तान में जो एक्टिंग किया, और रफ़ी साहब और सुरैया जी ने गाया, नौशाद साहब ने संगीत दिया, शकील बदायूं उन्होंने गाना लिखा। तारारी तारारी स्विंगिंग सॉन्ग तारारी।

0: देव साहब के साथ इनका इतना अच्छा रिश्ता था, दे यूज टू कॉल ईच अदर निक नेम्स. और जैसे देव साहब को शी यूज टू कॉल हिम स्टीव एंड देविनिया, एंड वो कहते थे सुरैयाना इटालियन एक्सेंट में, एंड वी यूज टू कॉल हर नोजी. बड़ा प्यार था दोनों को एक दूसरे से.
1: Like a gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.
0: 67 films and 338 songs. Suraiya Jamal Sheikh. Umeed hai aapko ye tribute pasand aaya ho. Of Suraiya on Like a Gold. Main hoon Bali Brahmbhatt.

0: क्या गाने क्या गाने. I mean, I always get into another world when I listen to songs like Zihale Miskin. और काफ़ी मतलब तहकीकात करनी पड़ती है जानने के लिए कि क्या है. एंड इट इज़ बेसिकली आमिर खुसरो. ऑब्वियसली हु डजंट नो दैट नेम. हु यूज़ेस टू लैंग्वेजेस, एक ब्रज भाषा एंड पर्शियन इन इज गज़ल ज़िहाले मिस्किन. तो इस गज़ल इज़ ऑल अबाउट लव, लॉन्गिंग एंड सेपरेशन. और इसके मीनिंग वर्ड बाय वर्ड आप देखें तो इतना इंटरेस्टिंग बनता है कि एक सिंपली समझ आती है तो मज़ा आ जाता है सुनने में भी. विदाउट नोइंग द मीनिंग भी गाना अच्छा लगता है, क्योंकि गाया बहुत खूबसूरती से शब्बीर कुमार और लता जी ने. ज़िहाले मिस्किन यानी कि लुक एट द पुअर. एंड देन मकुन बरंजिश, इट्स डोंट लुक एट इट विद एंगर. एंड बहाले हिजरा, इन द स्टेट ऑफ हिजर और सेपरेशन. बेचारा दिल है, द पुअर हार्ट. डोंट लुक एट द पुअर मी विद कंटेम्प्ट, बिकॉज माय पुअर हार्ट इज गोइंग थ्रू द सेपरेशन फ्रॉम द बिलवेड. दैट जोड़ के ये बात बनती है और खूबसूरती से लिखा गया. एंड देन फिल्म धनवान का गाना, आहा, ये आंखें देखकर लता जी अगेन विद सुरेश वाडकर जी. तो आगे बढ़ते हैं और एक कंपटीशन का टाइम आया है. कंपटीशन में क्या क्या होने वाला है अब भी बताता हूँ. सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा. यू आर गोइंग टू गेट कपल ऑफ टिकट्स टू अ शो.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन.
0: And here we go with the competition. Yes, Laika Radio Network has teamed up exclusively with Dharma Productions for the Gujarati film Jindagi Once More. Yes, usually to Zindagi hota hai, jab but Gujarati title hota hai, to Jindagi Once More. Starring none other than the man who came up with the phrase Enni Maane. He's coming once more, starring Siddharth Randeria. I called him earlier, congratulating him. He's traveling extensively from Rajkot to Ahmedabad to all over Gujarat kind of thing to promote the film and everything. So, kal 1:30 baje hum unse baat karenge aur wo hame batayenge unka experience aur ye film kya hai. It releases at cinemas this weekend. Now, we have a pair of tickets to give away to a special invite-only screening of Jindagi Once More at the Courthouse Hotel near London's Oxford Street Station. अभी से सुन लो, अगर नहीं जा पाते तो please don't apply for it. Jindagi Once More at the Courthouse Hotel near London's Oxford Street Station. This is a special invite-only screening of the film. The screening takes place this Thursday, 18 June at 6 p.m. Thursday, 18 June at 6 p.m. and you send the word Jindagi. J-I-N-D-A-G-I. Zindagi mein se J kar do Z ke jagah. तो जिंदगी बन जाता है. सेंड द वर्ड जिंदगी फॉर यू टू विन अ पेयर ऑफ टिकट्स विद योर फुल नेम एंड टेलीफोन नंबर. नाउ विनर्स विल नीड टू कलेक्ट द टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू ऑन द नाइट ऑफ द स्क्रीनिंग एंड द टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद एनी अदर स्क्रीनिंग और फिल्म. सो गिव इट अ गो एंड बी देयर ऑन थर्सडे 18 जून एट 6 p.m. टू वॉच जिंदगी वंस मोर.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you 126.7 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Wow, today's match is 5 p.m. is going to be Spain versus Cabo Verde. That's Group H. 8 p.m. is Belgium versus Egypt. That is Group G. And 11 p.m. Saudi Arabia versus Uruguay. Do you know the first ever 1930 May jo World Cup hua tha was in Uruguay. First ever World Cup. Yes, originally called Victory. Actually, jo award diya jata tha, the cup, that is the FIFA World Cup, was known as Victory. The Jules Rimet Trophy was the original prize awarded to the winner from 1930 to 1970. Iske baare mein aur bataunga later on. But watch the matches tonight.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rack Law, if you mention Leica.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: You're listening to Bali Brahmbert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
4: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
5: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
6: This tune, the FIH Hockey Pro League,

0: एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में। Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
9: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
10: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
11: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
11: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
10: दर्शन पण अने यूरोप पण।
11: सीट जल्दी भराई रही है, आज ही बुक करो स्टार टूर साथे।
10: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
11: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
13: Like a gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Getting started couldn't be easier. At Wix, you can begin planning your new kitchen with our design consultants. Simply arrange a free home measure or an in-store design consultation. Book your free kitchen design appointment and turn all your ideas into reality at Wix.
1: Like our gold.
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
5: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. India versus Pakistan live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, बिल्कुल unmissable. अपने टिकट्स अभी बुक करें at englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
4: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 आवर लाइन
5: लंदन. गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब टीआरएस कैश एंड कैरी साउथ हॉल में. ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस. परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स. आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग. आईटेक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UB24AX. वंस यू विजिट, यू कम अगेन एंड अगेन.
13: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533065549.
14: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
15: Gold Drive with Sandy Shah.
16: Oh yeah.
15: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The A4 Great West Road still partially blocked this evening between the Park Grand Hotel and Sutton Lane is due to a building fire. Traffic queuing in the area, still queuing on the A406 North Circular Road both ways at the Hangar Lane Gyratory. Slow on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner. A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout, and then on to North Holt Station. Queuing on the A312 the Parkway southbound before the M4 Junction 3 to the Tube, and severe delays on the Elizabeth line between Abbeywood and Reading, and between Whitechapel and Abbeywood is due to an earlier trespass incident at Custom House. That's your latest traffic and travel.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
4: Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners Leica Radio.
5: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे. टिकट बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखणा रेजो हस्बंड जी.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 0 3 9 6 3 5 7 5 7. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
9: ये तो बताओ, कोई पता चला?
10: गुरु गुरु,
11: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
12: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र.
11: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208 514 5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
13: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold.
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना. मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 02 0 3 7 7 3 6 3 3. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
16: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
17: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02208767627
0: Ashwini, in for Anisa Nasir on the evening show on Leica Gold.
18: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: हाँ, मैं बदलने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पे पूरे 3 घंटे मस्ती मजा गपशप इंटरैक्शन। तो असाइनमेंट देगी दीदी? अरे ऐसे कैसे होगा कि असाइनमेंट नहीं आएगा आप सबके लिए। तो हुआ यूँ है कि मैंने जो एक नई वेब सीरीज अभी आई है अमेजन पे, दैट इज़ रिगार्डिंग टाटा JRE टाटा पे ये सीरीज़ बेस्ड हैं और कैसे किस तरीके से टाइटन वॉचेस बनी उस पे ये सीरीज़ हैं। तो मैं अभी मैं सेकेंड एपिसोड पे हूँ, उसके आगे मैं अभी जा नहीं पाई। सो दैट एक्चुअली गेव मी एन आइडिया कि क्यों ना आप सबसे पूछा जाए कि आप सबको अपनी अपनी रिस्ट वॉच कब मिली थी। ऑब्वियसली आई एम अ स्टोरी टेलर, मैं अपनी स्टोरी तो सुनाऊंगी। सो मुझे मेरी फर्स्ट वॉच मिली थी इन year 7। माई पापा वॉन्टेड टू गिफ्ट मी दैट ऑन माई बर्थडे, लेकिन हमारे कोई एग्जाम्स आने वाली थी। एंड बचपन से मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ ना अर्न करना चाहती हूँ। अब कहीं जाके समझ में आया कि MA भी मिल जाए ना तो ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक हमेशा एक गोल और टारगेट रखने की आदत सी रही बचपन से। तो आई टोल्ड माई पापा कि पापा मुझे जो भी मेरा एक परसेंटेज था मुझे वहाँ तक पहुँचने दीजिए। इफ़ आई गेट ऐसे ऐसे पेपर्स में इतने इतने मार्क्स मिलते हैं, इतना परसेंटेज मिलता है, तो फिर आप मुझे मेरी वॉच लेके दीजिएगा। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट रिस्ट वॉच। अब आप जाइए अपने अपने बचपन में, फटाफट याद करिए। नहीं आ रहा है फटाफट, टाइम ले लो थोड़ा सा। टाइम लेके मुझे, आई एम श्योर आप लोगों के पास में बहुत सुंदर कहानियाँ होंगी। एंड यही तो हम करते हैं ना इस शो में, यहाँ पे शेयरिंग होती है आपके कहानियों की, मेरे कहानियों की, और इन कहानियों को हम बुनते हैं बहुत सारे गीतों के द्वारा। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 126.70 Indian rupee. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank.com. Locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
4: Mm-hmm.

0: द इवनिंग शो विद अश्विनी
1: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
2: ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के बीच में मैच हुआ जिसमें आइवरी कोस्ट ने एक गोल दागा. उसके बाद ग्रुप एफ में स्वीडन और ट्यूनिशिया के बीच मैच हुआ तो स्वीडन ने दागे हैं 5 गोल, ट्यूनिशिया ने दागा केवल एक गोल. ग्रुप जी में बेल्जियम और इजिप्ट के बीच 8 बजे मैच शुरू होगा. ग्रुप एच में स्पेन और केप वर्दी के बीच में मैच होने वाला है, वो तो फुल टाइम हो चुका है. एंड सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे के बीच रात 11 बजे मैच शुरू होने वाला है. एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रॉक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 22 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ. मंडे शुरू हो गया, मंडे के पहले आवर में आप और हम मिल लिए, हाय हेलो हो गई. एंड अब आ रही है ब्यूटीफुल स्टोरीज आप सबके लाइफ में से. देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बारे में लोग जानें. कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये तो इतना सुंदर है ना, ये किसी के साथ में तो शेयर होनी ही चाहिए चीज़. एंड इसीलिए मैं ऐसे सवाल लेके आती हूँ कि आपकी जो स्टोरीज हैं उसमें मुझे डेफिनेटली इंटरेस्ट है. बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन मतलब है क्या? आप कुछ लोग कहेंगे यू आर वेरी नोजी, तुम्हें क्या करना है हमारी लाइफ से, हाय हाय इतना नेगेटिविटी में क्यों जाए, हम तो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, हम इतने प्यार से पूछ रहे हैं. तो इतने प्यार से, उतने ही प्यार से आप भी अपनी अपनी स्टोरीज बताएं. एंड मेरे साइलेंट लिसनर्स, जी भाई साहब आप, हाँ आप मुस्कुराइए बस, हाँ मतलब हाय हेलो अश्विनी नहीं करेंगे. एंड दीदी आप क्या कर रही हैं? आप ड्राइविंग कर रही हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, ऐवी बैठी है, काम भी करी, कुछ भी, हेलो अश्विनी आ सकता है, बड़ा मज़ा आएगा मुझे भी. सो मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाली हूँ ब्लैक कॉफ़ी की क्या थियरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात करते हैं कुछ ही देर में.
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश. एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5 कोर्स लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
10: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
9: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: London, good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. Full iTag at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
15: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
16: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
15: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
17: Dulhan ke liye makeup.
15: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
18: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
19: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
3: दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, जिसमें हम लाते हैं आपके लिए तीन अमेजिंग फीचर्स यादों की बारात, जिसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट आवर का फीचर, सेकंड आवर है इमोशन ऑफ द डे। तो मोटिवेशनल मंडे होगा, सेकंड आवर में गजल या कव्वाली, बताइए मैं क्या सुनाने वाली। ओके, मैं आप सबसे कह रही थी कि ब्लैक कॉफी थियोरी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले बताऊँ आप सबके जो स्टोरीज हैं वो इतनी सुंदर स्टोरीज है, किसी ने जब वो 11 साल के थे उन्हें तब वॉच मिली, किसी ने अपने कमाई से 16th ईयर में अपने लिए वॉच खरीदी, किसी को एंगेजमेंट के टाइम मिली, किसी के पापा ने घड़ी लेके दी। बहुत बहुत सुंदर जर्नीज होती है, और वो जो पहली वॉच होती है ना, वो हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल होती है। होता है ना, पहली चीज़ें कुछ बहुत स्पेशल होती हैं। ओके, तो व्हाट इज़ नाउ ब्लैक कॉफ़ी थियरी। तो ऐसा है कि कई लोग जो हैं ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। ब्लैक कॉफ़ी एक अलग सा नुस्खा बता रही हूँ। सुबह उठते से अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी में एक चम्मच घी डाल के पी लिया, तो एक तो आपकी एनर्जी लेवल बड़ी अच्छी रहेगी, दूसरा आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, तीसरा जो बहुत खाने में इंटरेस्टेड लोग हैं उनकी भूख जो है कंट्रोल में रहेगी। नाउ लेट्स कम टू द ब्लैक कॉफ़ी थियरी। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं वो ज़िंदगी जिस भी तरीके से आती ना उसे एक्सेप्ट करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, हम लोग कॉफ़ी में शुगर डालते हैं उसको मीठा बनाने के लिए, हम लोग दूध ऐड करते हैं उसका रंग और टेस्ट बदलने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी इट्सेल्फ होती है कड़वी, हम उसे अपनी तरीके से ढालना चाहते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओरिजिनलिटी उस कॉफ़ी की जो है वो जितनी ओरिजिनल होती है, जितनी कड़वी होती है, वो उतनी ही आपके हेल्थ के लिए बेटर होती है। वैसे ही जो लोग ये ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं एज ब्लैक कॉफ़ी, वो ज़िंदगी को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो आती है, रियल फेजेस लेके, जो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है ना, कभी सुख तो कभी दुख है, उस चीज़ को वो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हे, अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लगी हूँ मतलब मैं ज़िंदगी को एक्सेप्ट करने लगी हूँ काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से इतना नहीं कि आई एम अ चाय पर्सन, बट आई लव टू हैव माई सुबह वाली ब्लैक कॉफ़ी विद एक चम्मच दो चम्मच घी के साथ में। सो कोई आपको ब्लैक कॉफ़ी लेते हुए दिखे तो यू कैसे इतनी कड़वी कॉफ़ी पी लेते हो, ये उन्हें बोलने मत चाहिएगा, क्योंकि शायद वो काफ़ी सुलझी हुई पर्सनालिटी होगी। कैसी लगी थेरी, लिख के बताइए जरा। नेक्स्ट इज यादों की बारात,
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: का वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Shri Jagannath Society UK warmly invites you to Rath Yatra 2026, a divine celebration of Lord Jagannath. Saturday, 18 July, subah 10 baje se sham 4 baje tak. Navnath Center, he's UB3 1AR mein. Bhajans, aarti, sacred rath pulling aur prasad ka labh zarur le. Event free hai, lekin registration mandatory hai. Free parking bhi sirf registration ke saath available hogi. Register now at shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026. Jai Shri Jagannath.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
8: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधुं ऑलराइट छे.
9: मैं छेने बैक टू बैक 3 मूवीज जोई लीधी.
8: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी केओस विथ वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधुं ऑलराइट छे.
9: बेतर कलाकमल पाछो आवी जशे ने पछी बधुं ऑलराइट थई जशे.
8: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून. फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल.
10: एवुं लागे छे के पिक्चर चालशे.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Leica Gold.

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: Group E, Group F और Group H का full time matches हो चुके हैं. फिलहाल जो match चल रहा है वो Belgium और Egypt के बीच चल रहा है, जहाँ पे Egypt ने एक गोल दागा है. 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे के बीच रात 11 बजे मैच शुरू होने वाला है. साथ ही डोंट फॉरगेट यू गेट अप टू 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस हमारे स्पॉन्सर्स जो है रॉक लॉ के साथ में. आप 15 मिनट्स ऑफ फ्री एडवाइस ले सकते हैं जब आप मेंशन करते हैं लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: एक से एक बेहतरीन गीत लाइंड अप करें आप सबके लिए. आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. अब बात करते हैं गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, और ये न्यूज़ तो हमारे अपने यूके की है. अ न्यू हियरिंग इम्प्लांट इज हेल्पिंग सम डेफ चिल्ड्रन हियर देयर पेरेंट्स वॉइसेस फॉर द फर्स्ट टाइम. इन आयरलैंड लोनली एल्डरली पीपल आर रिसीविंग डेली पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन दे हैव नेवर मेट. इन फिनलैंड prisons are replacing punishment focused cells with rehabilitation campuses that teach inmates how to rebuild their lives. In Denmark, some colleges are replacing punishments with daily student therapy sessions to reduce violence and bullying. Aisi hi bahut sari achhi aur feel good good news aap sunte hain. This is the evening show with Ashwini aur hum dheere dheere badh rahe hain emotion of the day, that is motivational monday. Motivational monday mein aaj आप सुनने वाले हैं मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत जो डेडिकेटेड है आप में से हर किसी को.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone, even people who know nothing about investing. Like Keith, who thought dividends were a boy band. Jessica, who thought compound interest was a prison dating app. And Sue thought FTSE 100 was a bit of under-the-table fun, which surprised her accountant.
3: Oh, no.
2: If we can make investing feel good for them, it's no wonder which have recommended us 8 years running. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
0: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
0: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected.
9: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhundne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milayein 0208839080 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Raga Sun.
10: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet,
3: पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
13: बैक टू बैक थ्रन मूवीज जोई ली थी।
12: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी केओस विद वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
13: बेहतर कलाकार पाछो आवी जशे ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
12: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल।
14: एवु लागे छे के पिक्चर चालछे।
15: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
16: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
18: Emotion of the day.

0: emotion of the day. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Leica Gold.
2: Leica Gold.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
4: हमारे क्रिकेट करेस्पॉन्डेंट कमल प्रभाकर जी ग्राउंड पे हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि क्या हाल चाल है वहाँ पे, कैसे चल रहा है क्रिकेट की अपडेट्स के लिए. ओवर टू यू कमल जी.
5: हाँ जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग, ऑल वेल?
4: या गुड, थैंक यू.
5: ग्रेट. सो लिसन, एट द मोमेंट टुडे इज अ डे ऑफ फॉर एवरीबॉडी, तो रिलैक्स कर रहे हैं एंड दे गो टू मूव, सो दे गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूके में. तो नाउ द गेम्स विल स्टार्ट टुमारो, विच टुमारो वीव गॉट न्यूजीलैंड प्लेइंग श्रीलंका इन द मॉर्निंग, और आफ्टरनून में वीव गॉट द होम टीम इंग्लैंड टेकिंग ऑन आयरलैंड. सो आई थिंक इज गोना बी बेटर फायरवर्क्स टुमारो. गुड, द टूर्नामेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे. वी हैड अ ग्रेट गेम यस्टरडे विद इंडिया पाकिस्तान, विच India won yesterday, but Pakistan gave a good fight. तो जैसे देख रहा है, you know, like the girls are doing amazing, the skills, the fitness, and you know, the women cricket has gone to a different level altogether. Seriously.
4: Thank you, Kamal ji. Thank you for the update, and looking forward for the upcoming matches. Thank you so much.
5: Take care. Bye bye.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
6: Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show.

0: Extra podcast update.
1: Podcast episode 20 is out, The Bollywood Rewind, and it is hosted by Anujarya. Was this decade a perfect mix of stars, songs and romance? बहुत सारी चीज़ों पर बातें हुई हैं. Like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Like extra is here.
1: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 41 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग चोबित अश्विनी. आप लोगों के मैसेजेस बैक टू बैक आ रहे हैं, खाने पीने के फोटोज आ रहे हैं, अपने मन की बातें आप हमें बता रहे हैं. और जो पहले आवर में मैंने सवाल पूछा था कि आपको आपकी ज़िंदगी की पहली रिस्ट वॉच कब मिली थी, उसकी बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ आप मुझे बता रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग अपनी स्टोरीज भी सुनाते हैं. नेक्स्ट ट्रैक जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जंगली फिल्म से ये गीत. 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
4: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
3: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
4: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
3: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
4: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
3: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
4: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
5: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
6: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
5: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
7: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे,
8: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
5: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
9: Dulhan ke liye makeup.
5: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए Minar Jewelers पर, 181 Upper Tooting Road, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: रोज़ कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,
1: लायका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For one pound you'll get 126.94 Indian rupee, 373.36 Pakistani rupee, 446.20 Sri Lankan rupee, 164.72 Bangladeshi taka, 83.75 Afghan Afghani, 173.62 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £103.72 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 8:50. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे रहता है आपका हमारा साथ। तो सेकेंड आवर का जो मोटिवेशनल मंडे था वो आप सबको सुनाया हमने। वो रोते हुए आते हैं, सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। तो आप में से हर एक इंसान जिसने आज ये गीत सुना है, आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। होता है कुछ लोगों की स्टोरीज सामने आती हैं, कुछ लोगों की स्टोरीज सामने नहीं आती। अगर आपकी स्टोरी किसी के सामने नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप मुकद्दर के सिकंदर नहीं हैं। अपनी अपनी लेवल पे हर कोई एक सेलिब्रिटी है, हर कोई एक स्टार है, क्योंकि हम आपके शूज़ में नहीं और आप हमारे शूज़ में नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर होता है कि हमारी जो जर्नी है वो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। और यही जो हम सीखते हैं यहाँ पे इस शो में, आप अपनी ये पूरी जर्नी हमारे साथ में शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सीखने मिलता है। आई एम ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड कि मैं आप सबसे कनेक्टेड हूँ एक सुंदर माध्यम के द्वारा, जो है ये माइक एंड आर रेडियो। सो हमारा लाइका गोल्ड रेडियो एंड लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर मुझे हर शाम आप सबसे मिलवाता है। इंटरैक्टिव होता है हमारा ये शो, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेरे सवाल आते हैं, आप लोगों के जवाब आते हैं, और हर गीत पे आपकी तरफ से जब वाह वाह आती ना तो और मज़ा आता है। नेक्स्ट ट्रैक भी वाह वाह वाला है, क्योंकि झुक गया आसमान से लता मंगेशकर की आवाज़ में उनसे मिली नज़र।
1: Feel good classics all day. Leica Gold. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
3: Leica Gold. Harrow, come together for a meaningful cause. Shri Kutch Satsang Swaminarayan Temple, Canton Harrow and St. Luke's Hospice Harrow proudly present the annual Starlight Walk, Saturday 27 June from Byron Hall starting at 7:30 PM. Taro ke niche saath walk kariye aur local community mein end of life care ke liye support dijiye. Register today and receive a special discount using code LAIKA10. Details ke liye visit kare skssd.org or follow St. Luke's Hospice on social media. Radio partners Leica Radio.
4: Hi! हेलो केचो मुचो केची दवेना आ શું થયો અરર પબ્લિક ડિમાન્ડ ફરીથી આવી રહી છે લંડન મારો નવો નાટક લઈને પત્ની પ્રીમિયર લીગ એટલે કે PPL યસ ફ્રોમ 3rd જુલાઈ ટિલ 12th ઓફ જુલાઈ વાઓ એન્ડ ધીસ ઇઝ બીંગ પ્રેઝન્ટેડ બાય પંકજ સોડા ગેલેક્સી શોઝ યાદ રાખજો
5: પત્ની પ્રીમિયર લીગ શોઝ એટ રાઇસલી અલ્બર્ટન ઈસ્ટ એન્ડ સાઉથ લંડન લોર હોમ લેસ્ટર ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન કોલ દીપા ઓન 0794756194
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
9: This is huge.
8: Fadi Kalal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
9: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
8: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
9: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
8: Fadi Kalal, Rayner's Lane. There is only one.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
10: Father son no bond jitlo special che, itli j special film avi rahi che.
12: Uncle tame pehla thi awaz chho.
13: Awa itle keva.
10: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
13: Maro baap banvani koshish karat tu. बुद्धि बेची है वैसे तू अरे जिंदगी ये भी मौज थी जीव जे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे
10: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
13: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर
14: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
15: द इवनिंग शो विद अश्विनी
16: दिस इज लाइका गोल्ड
17: रेमिनिस दोज क्लासिक्स

इस आवर का आगाज हमने किया था लावर इज विच वॉज रिलीज इन 1999, उस फिल्म के गीत आ कहीं दूर चले जाए हम, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में बहुत ही मेलोडियस ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड सेकंड ट्रैक वाज किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में लावारिस, ये भी लावारिस था फ्रॉम 1981, कब के बिछड़े। मैंने सोचा क्यों ना दोनों लावारिस फिल्मों से इस आवर का स्वागत किया जाए, एक 99 की फिल्म, एक 81 की फिल्म। थर्ड आवर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं गज़ल सुनाती हूँ या कव्वाली, इसका अंदाज़ आप लोग लगाते रहते हैं, कितने दिन हो गए हम लोग साथ में और अभी भी मुझे मज़ा आता है जब आप लोग अपने अपने अंदाज़ भेजते

0: ग्रुप जी में बेल्जियम और इजिप्ट के बीच मैच चल रहा है, तो इजिप्ट ने एक गोल दागा, 58 मिनट्स हो रखे हैं। एंड सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे में रात 11 बजे मैच शुरू होने वाले हैं, बाकी सारे मैचेस जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: भाई हमारे फुटबॉल स्कोर अपडेट्स के जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे जब भी आप बात करेंगे तो लाइक का ज़रूर मेंशन करिए, तो रॉक लॉ जो है उनकी तरफ से आपको 15 मिनट्स का लीगल एडवाइस फ्री मिलने वाला है। कंपटीशन आ रहा है बस कुछ ही देर में। और वीकेंड पे मैंने क्या किया, तो वीकेंड पे बड़ा मज़ा आया बिकॉज हम लोग सभी जो हैं हम लोग गए थे आतिफ असलम का शो देखने के लिए। And with me, I did attend some other events as well, but something happened to my right feet and it's all swollen up. फिर मैं हमारा राजवीर जो है he was teasing me, he was pulling my leg and saying कि हम सबको बोलेंगे कि हमारे पास लंगड़ा त्यागी है। तो जी हाँ बिल्कुल, अपने लंगड़ाते हुए पैर के साथ मैं पहुँची बिकॉज मुझे अपनी टीम के साथ मिलना था, मस्ती करनी थी। एंड देन आ गई हूँ मैं भी, हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही होगी और उनके कुछ इश्यूज हैं, तो उनके साथ मैं हाँ डरो ना मैं भी हूँ, लंगड़ाते हुए मैं भी उसने स्टूडियो पहुँची। आई एम नॉट डांसिंग, जब गाने आ रहे हैं जैसे मैं जनरली बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ वैसे नहीं हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली कुछ पेन वेन तो रहता है, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ ना, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी एंड शो मस्ट गो ऑन इन लाइफ। सो हमेशा जो भी चीज़ें हैं उसके साथ में एक्सेप्ट करते चलें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलें, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तभी तो कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हम आपको सुना रहे हैं हरिहरन की आवाज़ में गीत, उसके बाद में आज मंडे है भाई तो आज होती है गज़ल, गज़ल भी लेके आपके लिए हाजिर हो गई हूँ, लेकिन इसी बीच होने वाला है कॉम्पिटिशन, तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dell, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
5: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: Two businesses,
7: same town,
6: same service.
7: One appears on page one of Google,
6: the other doesn't.
7: Guess which one gets the customer?
6: The truth is brutal.
7: The first page of Google gets the business.
6: Everyone else gets what's left.
7: So here's the real question.
6: When your customers search for what you sell, do they find you?
7: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
10: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
11: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे?
12: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
10: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
13: Maa, dulhan ke liye makeup.
10: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
15: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 9:30, 9:30। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। ओके, मुझे ना आप लोगों के साथ में इसीलिए प्रोग्राम पेश करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं जितना ऐसे इंटरेक्शन हमारी होती ना, आप लोग ना मुझे हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जग्गी जी है ना, मन्ना डे की आवाज़ में मैंने सुनाया सफ़र फिल्म से तुझको चलना होगा और मैं अपने पैर के बारे में बता रही थी एंड जग्गी जी ने वहाँ कहा क्या बात है, क्या बात है, तुझको चलना होगा। सीरियसली पैर की हालत क्या और सुनाया कौन सा गाना, तुझको चलना होगा। बट वही तो मैंने कहा ना जी कि द शो मस्ट गो ऑन। ओके चलिए, तो भाई जो भी गुजराती समझते हैं, जिनको गुजराती आती है, अगर वही लोग पार्टिसिपेट करें तो अच्छा, शायद वो लोग ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाए इस फिल्म को। तो लाइका रेडियो नेटवर्क हैज टीम्ड अप एक्सक्लूसिवली विद धर्मा प्रोडक्शंस फॉर द गुजराती फिल्म जिंदगी वंस मोर स्टारिंग सिद्धार्थ रंदेरिया विच रिलीजेज एट सिनेमाज दिस वीकेंड। वी हैव अ पेयर ऑफ टिकट्स, दो टिकट्स हम लोग देने वाले हैं, स्पेशल इन्वाइट है क्योंकि ये स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है जिंदगी वंस मोर एट द कोर्ट हाउस होटल नियर लंदन ऑक्सफर्ड स्ट्रीट स्टेशन। वही लोग एक्चुअली इस कॉम्पिटिशन के लिए अपना नाम फटाफट दे दीजिए जो जा सकेंगे। हाँ तो ज़रूर अप्लाई करिए इस कॉम्पिटिशन में, अभी अभी फटाफट आपको भेजना है अपना नाम और फोन नंबर। द स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस ऑन थर्सडे, इट्स अ वीकडे, थर्सडे 18th of June शाम 6 बजे। अगर आप 18th of June थर्सडे शाम 6 बजे जा सकते हैं तो ही टिकट्स के लिए अप्लाई करिए, क्यों अगर आप नहीं जा सकते तो किसी और को एटलीस्ट ये पेयर ऑफ टिकट्स मिल जाएंगे, दो टिकट्स मिलेंगे। विनर्स विल नीड टू कलेक्ट द टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू ऑन द नाइट ऑफ द स्क्रीनिंग। द टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज विद एनी अदर स्क्रीनिंग। केवल और केवल इस फिल्म के लिए दो टिकट्स के लिए, तो फटाफट अपना नाम और फोन नंबर लिख के मुझे भेजिए। अगर आपको गुजराती समझती है, गुजराती अच्छी लगती, गुजराती आती है और इस फिल्म को देखना चाहते, तो अभी फटाफट अपना नाम और नंबर मुझे भेजिए। गजल इज नेक्स्ट।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Ghazal.

0: Puzzle. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए जी एक बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 37 मिनट्स पास्ट 9:15 ऑफ जून मंडे। हम लोग बस शो के अंत की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हम बढ़ते जा रहे हैं। और आप सबका जब साथ मिलता है ना तो प्रोग्राम करने में इतना मज़ा आता है, मैं आपको क्या बताऊँ। ओके जी, सो गुजराती फिल्म्स की जो विनर हैं, जिनको दो टिकट्स मिलने वाली हैं, दैट इज़ सुमैला मुंगुर जी, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं दो टिकट्स। तो आपकी डिटेल्स हमने ले ली है, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको आगे कहाँ कब कैसे पहुँचना है, क्या चीज़ें हैं, वो सब डिटेल्स आपको मिलने वाली है। देखिए जब कॉम्पिटिशन आता है तो हम इसीलिए अनाउंस करते हैं कि ध्यान दीजिए, फर्स्ट कम जितना फटाफट जो लोग वो उतना जल्दी उनका नंबर लगेगा फॉर श्योर। कॉम्पिटिशन के तो मजे ये होते हैं कि एक ना मजा आता है कि चलो यार जाएंगे, देखते हैं कि ना एक ट्राई करते हैं। कभी कभी हमारा लक होता है, कभी कभी चीज़ें हमारे लिए काम में आ जाती है, बस वही तो चीज़ है। ज़िंदगी जो है ना वो ऐसी खट्टी मिट्टी है, और ये खट्टी मिट्टी ज़िंदगी खट्टी कब बन जाती है, जब हमारे पास में चीज़ें नहीं आती, और मीठी कब बनती है, जब हमें चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये खट्टा मीठा शो बिल्कुल आप सुनते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, शाम 7 से 10 बजे तक। मोटिवेशनल मंडे में आपको सुनाया गीत गज़ल आप सबको बहुत पसंद आई है, आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान से ली थी ये गज़ल। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सारी गज़लें इस फिल्म की बेहतरीन हैं, एक से एक जबरदस्त।
0: ये है लाइका गोल्ड,
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.
4: This is Ashwini, in for Anisa Nazir on The Evening Show. Like a
5: Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
10: મે છેને બેક ટુ બેક 3 મૂવીઝ જોઈ લીધી।
9: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વીરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી। બધુ ઓલરાઇટ છે,
10: બેટર કલકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધુ ઓલરાઇટ થઈ જશે।
9: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન। ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાસ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ।
11: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે।
12: થિંક યુ માઈટ બી ઓવરપેઇંગ ફોર કાર્ડ પેમેન્ટ્સ? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
13: Backstage Siblings, first ever UK performance, happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 126.75 Indian rupee, 373.08 Pakistani rupee, 445.86 Sri Lankan rupee, 164.6 Bangladeshi taka, 83.75 Afghan Afghani, 173.49 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
14: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £103.49 per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: भाई जब मैं आप लोगों को मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देती हूँ कि गुड नाइट, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे शो, उसका तात्पर्य ये होता है क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है आप सबकी कि मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहती कि उन तक मेरा थैंक यू ना पहुँचे, तो थोड़ा जल्दी शुरुआत हो जाती है मेरी तरफ से थैंक यू कहने की। तो बिल्कुल ये ना सोचूँ कि ओ क्या ये रफा दफा हो गई क्या, नहीं नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जितना प्यार आप लोग हम पे बरसाते हैं, जितना आप लोग हमारा साथ देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बहुत भावनात्मक भी होता है। एक तो आई लव माई हिंदी, भावनात्मक इस बड़े मुझे इमोशनल लगता है क्योंकि जितना प्यार आप लोग देते हैं, जितनी फीडबैक आप लोगों की तरफ से आती है, जितनी शाबाशी आप लोगों की तरफ से आती है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। भाई गोल्ड नाइट सर्विस ओवरनाइट सर्विस है तो ज़रूर सुनिएगा। रात में नींद नहीं आ रही है, झगड़ा हो गया है, काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जो भी, बिल्कुल हमारी गोल्ड नाइट सर्विस जो ओवरनाइट सर्विस है उसे ज़रूर सुनिएगा। लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। मॉर्निंग में काजल हमारी आती है अपनी सुरीली आवाज़ लेके, सुबह 6 बजे उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। आई लव उनका जो फीचर होता है ना मॉर्निंग मंत्रा, बिल्कुल मेरे यहाँ पे चाय का बर्तन चढ़ता है और वहाँ पे मॉर्निंग मंत्रा शुरू होता है। सो हमेशा कहते हैं कि खाना बनाते समय अगर आप अच्छी अच्छी बातें सोचें और सुने तो उसका इफेक्ट आपके घर वालों पे होता है। तो सोचिए सुबह की चाय मॉर्निंग मंत्रा, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होता है। हमेशा कहते रहे प्यार दो प्यार लो, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, प्लीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना करो, और पावर का यूज़ तो गलत लोग करते हैं। ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे फिर से, टेरिफिक ट्यूसडे। मेरी पड़ोसन जो मुझे घूर घूर को देख रही है, बाय।
4: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
7: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
4: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
14: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
15: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
16: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
15: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
16: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
15: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
17: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
18: Uncle tumhe pehla thi aawaz chho.
19: Aawaz itle keva.
17: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
19: Maro baap banvani koshish karat tu. बुद्धि बेचिया वैसे तू। अरे जिंदगी अभी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे।
17: Our Father's Day, feel the emotions, love and family moments with Zindagi Once More in cinemas on 19 June. For more information, visit Bakrania Media on Instagram.
19: तो थई जाए, जिंदगी once more.
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
20: Location, location, location.
21: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
20: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
21: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
20: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
21: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
20: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
21: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
20: high appreciation
21: in Dubai.
22: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye. Aapka safar hoga majestic Swiss Alps se lekar romantic Paris aur timeless beauty of Italy ke through.
23: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
24: The future belongs to creators.
25: At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
26: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
27: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: भोले भाले ललुआ भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
2: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है ओ।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम कसम।

0: mzy.com. T's and C's apply.
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है.
0: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
2: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे,
3: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
0: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
4: Dulhan ke liye makeup.
0: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
5: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: लायका गोल्ड 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me or you.
3: Southall Travel, at all protected.
4: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
5: This is huge.
4: Thadik Halal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
5: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
4: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
5: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
4: Thadik Halal, Rayner's Lane. There is only
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
7: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रह्यो छे
8: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
8: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
7: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
9: यू नो हाउ फैंस शाउट एट फुटबॉल मैचेस
10: वेक अप
9: दैट्स बिकॉज़ साउंड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टेल द प्लेयर्स दे आर रबिश वर्क्स इन एडवर्टाइजिंग टू बिकॉज़ व्हेन यू एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग यूजिंग रेडियो Your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: Are we there yet?
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
12: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simsy before we left London.
12: Simsy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
14: T's and C's apply.
15: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर

ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, हा हा हा हा हा, डर गया ना।

0: ये है लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 020-8574-8410
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
4: Exclusive radio partner, Like Car Radio.
6: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
7: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
8: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं.
7: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
9: माँ दुल्हन के लिए makeup.
7: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
10: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
11: Four beers, please, garçon!
10: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
12: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar ki.